बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही ना जाने कितनी पुरानी यादें हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जी हाँ, चाहे वो नानी घर की छुट्टियां हो या फिर आम के पेड़ या फिर कुल्फी वाले भैया की आवाज और वो छत पर बैठकर देर रात तक बातें करना, आह क्या दिन थे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बेहद ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला विषय। जी हाँ, गर्मियों की मीठी यादें। और दोस्तों, आज करेंगे ढेर सारी बातें, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ बचपन की शरारतें और सुनेंगे ऐसे गीत जो आपको सीधे उन सुनहरे दिनों में ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सफर।

बिल्कुल दोस्तों, कहीं ना कहीं हम उस ओर खींचे ही चले जाते हैं, यानी कि अपने बचपन की यादों की ओर। क्योंकि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ही होता था नानी घर जाने की तैयारी, ट्रेन का सफर, खिड़की वाली सीट के लिए लड़ाई और रास्ते में

मिलने वाले समोसे और आम का अचार, वाह। और आजकल के बच्चों की छुट्टियां मोबाइल और गेम्स में निकल जाती है, लेकिन पहले की गर्मियों में असली मज़ा था। सुबह जल्दी उठो, दोस्तों के साथ खेलो और दोपहर में दादी नानी की कहानियां सुनो। सच कहे तो उस समय खुशियां छोटी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। और दोस्तों, गर्मी का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि किसी को दशहरी पसंद तो किसी को लंगड़ा, तो किसी को आम रस, और वो कुल्फी वाले भैया की घंटी। बिल्कुल हाँ, बस आवाज सुनते ही बच्चे घर से बाहर दौड़ पड़ते थे। दोस्तों, पहले गर्मी में फ्रिज से ज्यादा मिट्टी के घड़े का पानी अच्छा लगता था, और दोपहर में मम्मी का कहना, बाहर मत निकलो लू लग जाएगी, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे। बिल्कुल, यानी कि गर्मियों की छुट्टी, यानी कि इसका मतलब है कि दिन भर मजे और मस्ती, यानी कि हमारे जो शरीर है और हमारा जो मन है, कहीं भी एक जगह तो टिककर बैठता ही नहीं था, हर वक्त हमारा मन कहीं भागता फिरता था। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, बता दो कि स्टूडियो में समय हो चला है 10:16 और 23 सेकंड, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपितु ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो देखते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर। बिल्कुल, और इस गीत के जरिए देखते हैं कि हमारा जो मन है कैसे भागता फिरता है।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

बिल्कुल दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये मौसम का जादू है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो एसी और कूलर्स का ज़माना है, लेकिन पहले गर्मियों की रातों में छत पर सोने का एक अलग ही मज़ा था। आसमान में चमकते तारे, धीमी धीमी हवा और परिवार के साथ देर रात तक बातें। कभी कभी तो तारे गिनते गिनते ही नींद आ जाती थी और सुबह कबूतरों की आवाज़ से आंखें खुलती थी या कोयलों की आवाज़ों से। बिल्कुल, सच में वे छोटी छोटी बातें ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां थी। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 10:28:30 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों, साथ ही ये भी बता दूं कि बातों और गीतों का ये सिलसिला चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक, तो यूं ही साथ बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

तो दोस्तों, पहले लोग गर्मी भगाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। कोई गीला तौलिया लेकर बैठ जाता था तो कोई अखबार से हवा करता था, और सबसे मज़ेदार बात, बिजली जाते ही पूरा मोहल्ला बाहर निकल आता था। कोई चारपाई डालता, कोई गपशप करता और बच्चे तो खुश हो जाते थे। गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल नहीं बल्कि दोस्त सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होते थे। जी हाँ, लूडो, कंचे, छुपन छुपाई और पूरा दिन खेलते रहो और फिर शाम को डांट खाओ। लेकिन उन खेलों में जो खुशी थी वो आज की दुनिया में कहीं खो गई है। दोस्तों, कभी कभी पुरानी यादें हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी की असली दौलत रिश्ते और मुस्कुराहटें हैं। और दोस्तों, स्टूडियो में वक्त हो चला है 10:42 और 36 सेकंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप।

0: चुटकी नुस्खे।
1: तो चलिए दोस्तों, अब हमारे खास सेगमेंट यानी कि एक चुटकी नुस्खे की ओर। तो दोस्तों, गर्मी में खुद को तरोताजा रखने के लिए ज्यादा पानी पिए, मौसमी फल खाए और तेज धूप में निकलते समय सिर ढके। खीरा, तरबूज और नींबू पानी को अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सावधानियां आपको गर्मी में स्वस्थ रख सकती हैं।

तो दोस्तों, आज की इस प्यारी से महफिल में हमने बात की गर्मियों की, उन मीठी यादों की जो शायद आज भी हमारे दिल के किसी कोने में मुस्कुरा रही है। वो नानी घर की छुट्टियाँ, आम की खुशबू, कुल्फी वाले भैया की आवाज़ और छत पर बिताई गई वो सुकून भरी रातें। सच कहे तो जिंदगी की असली खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। आज समय भले ही बदल गया हो, मोबाइल और भागदौड़ ने जिंदगी को थोड़ा तेज कर दिया हो, लेकिन पुरानी यादों की मिठास आज भी वैसी ही है। तो दोस्तों, कभी कभी जरूरी होता है थोड़ा रुकना और अपने बचपन को याद करना और अपने अपनों के साथ बैठकर खुलकर हंसना, क्योंकि यही पल आगे चलकर हमारी सबसे खूबसूरत यादें बन जाती है। और हम अगर इस गर्मी में मौका मिले तो एक शाम अपने घर वालों के साथ बातें कीजिए, पुरानी तस्वीरें देखिए और फिर महसूस कीजिए कि खुशियां आज भी हमारे आसपास ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है नॉनस्टॉप गपशप का आज का ये सफर आपको मुस्कुराहट, अपनापन और ढेर सारी यादों से भर गया होगा। जी हाँ, अब मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस वक्त के साथ और भी खास बन जाती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नए गीतों और ढेर सारी गपशप के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ निभाइए और हाँ, गर्मियों की इन मीठी यादों को दिल में सजाए रखिए। और जाते जाते आप सभी के लिए सोनू निगम की आवाज में एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

ई बदर बदर गाजी रे, ए हेयो मारी मारी रे, ए जाइमु गांगर पाड़ी रे, ए बदर बदर बदर बदर बदर।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर हाजिर है परियोजना प्रस्तुति। और आज परियोजना प्रस्तुति में मैं आपसे ढेर सारी बातें साझा करूंगी जुड़ी हुई उस स्कीम के साथ जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। तो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं परियोजना प्रस्तुति कार्यक्रम में। स्वदेश दर्शन परियोजना 2.0 ये जो है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक नई पहल है जो वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर केंद्रित करती है। ये योजना थीम आधारित सर्किट से आगे बढ़कर डेस्टिनेशन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है जिसका उद्देश्य भारत की पर्यटन क्षमता को पूरी तरह से साकार करना है। अब अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना, गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ पर्यटन स्थलों को विकसित करना। और दृष्टिकोण की बात करूं स्कीम से जुड़ी हुई बात तो ये है कि ये योजना बुनियादी ढांचे के भारी भरकम प्रोजेक्ट्स के बजाय स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन पर जोर देती है। ये पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार को योजनाबद्ध तरीके से सहायता प्रदान करती है। योजना में डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन DMO की अवधारणा को शामिल किया गया है। 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, जिनमें सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल है। ये योजना पर्यटन के अनुभव और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और अगर लक्ष्य की बात करूं तो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना। ये योजना 2014-15 से शुरू की गई है। पुरानी स्वदेश दर्शन योजना का ही नया और सुधरा हुआ रूप है जो अब गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। तो आज आप सभी के लिए 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति में आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत ने बातें की स्वदेश दर्शन स्कीम पर। फिर किसी रोज किसी और स्कीम के साथ जरूर उस पर ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी। फिलहाल रुक करती हूं कार्यक्रम की ओर, यानी 3 का तड़का।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
2: आकाशवाणी FM रेनबो।
1: अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है दोस्तों कि मतलब ये जो दोपहर में हम कार्यक्रम लेकर आते हैं, अब मैं क्या कहूँ, ये पूरा का पूरा दोपहर भी नहीं, ये ढलती हुई दोपहरी जो है ना, जब शाम की ओर करवट लेती है मुस्कुराते हुए, तब हम लेकर आते हैं आपके लिए दिल से दिल तक वाले चैनल पर आपका ही पसंदीदा नून शो 3 का तड़का #, दिल धड़का, यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। और जाहिर सी बात है कि दिल तो धड़केगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब नए फिल्मों के गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं। अब नए फिल्मों के गाने सुनने का जो समय होता है वो खासम खास यही होता है जिस समय हम प्रस्तुत करते हैं 3 का तड़का। तो चलिए शुरुआत करती हूँ उस गीत के साथ जिसके बोल हैं तुम क्या मिले। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में इस गीत को सुने।

इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी फिल्म से, और इसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए मतलब एक ऐसी सी बात है ना कि जैसे किसी को आप प्यार करो तो उसे हमेशा लगता है कि संतुष्टि नहीं होती है, यही मन करता है कि और प्यार करे। अगर बच्चा है तो कहता है पापा को और प्यार करो मुझे, मतलब प्यार जो है ना उसमें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता और इसीलिए प्यार अधूरा रहता है शायद। तो अगला गाना जो है लव मी थोड़ा और, फिल्म यारियां से इस गीत को सुने जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने, आवाज अरिजीत सिंह की।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला 3:14 और 44 सेकंड और इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है दिल से दिल तक वाला चैनल यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है उस चैनल पर जिसका नाम है 107 एफएम रेनबो और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा नून शो 3 का तड़का हैशटैग दिल धड़का विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और अब अगला गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है। वैसे मैं बता दूं कि हम जितने भी गाने लाते हैं ना वो सब के सब खूबसूरत होते हैं, बस अंदाज अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है, रिदम अलग होता है। और अगला गाना जो है उसे हमने लिया है जिस फिल्म से वो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2019 और पति पत्नी और वो फिल्म का नाम है। गीतकार कुमार, संगीतकार रोचक कोहली और आवाजें हैं रोचक कोहली, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की।

अगला गाना बिल्कुल तैयार है आपके लिए, और अगला गाना हमने लिया है फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह की आवाज में, ओमाही ओमाही। इरशाद कामिल ने बड़ी खूबसूरती से इसे लिखा है और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है।

ऐसा है दोस्तों कि 15 मई, आज 14 मई है और कल 15 मई है, तो 15 मई को कौन सी फिल्म सिनेमाघरों में और OTT पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि 1 Force of the Forest, ये एक बहुप्रतीक्षित अवेटेड भारतीय फोक थ्रिलर फिल्म है। इसकी स्टार कास्ट में है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं, और जो इनके फैंस हैं वो तो पहले दिन ही देखना चाहेंगे पहला शो। तो चलिए, 1 Force of the Forest कल रिलीज हो रही है, और जो बॉलीवुड के फैंस हैं वो तो फिल्म चाहे जो भी हो उनको तो बस देखना रहता है, क्योंकि वो जो एक इश्क होता है ना फिल्मों के साथ, बस उसका लेवल इंसान जज नहीं कर पाता कि कितना है, बस वो बढ़ते ही बढ़ते जाता है। और इसीलिए मतलब आप देखिएगा कि दुनिया में कहीं पे भी जाइए, और अगर आप कोई किसी भी रीजनल भाषा में, इंडिया के रीजनल भाषा में बोलिए, और अगर वो ना समझ पाए तो बस उनको इतना कह दीजिए बॉलीवुड, तो कहेंगे ओ इंडिया, इंडिया। एंटरटेनमेंट कहिए तो कहेंगे बॉलीवुड, और बॉलीवुड मतलब इंडिया। तो चलिए इसी बात में आपको सुनवाती हूं मैं अगला गीत। ये गीत आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी से आलिया भट्ट की आवाज में।

कल 15 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी एक्शन थ्रिलर सीरीज सैफ अली खान और एक पीपल्स वाले के किरदार में नजर आ रहे हैं जो राजनीति और भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाता है। और इसी के साथ बता दूं कि नेटफ्लिक्स पर धुरंधर द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा पर जो है इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का अनसेड और नया वर्जन रिलीज हुआ है जिसमें रणवीर सिंह एक जासूस की भूमिका में नजर आएंगे। तो बाय द टाइम आप डिसाइड करें कि क्या देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, क्या खाते हुए देखना है, क्या पीते हुए देखना है, चाय कॉफी, तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ सनम रे फिल्म से ये अगला ट्रैक अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में।

गजब का है दिन। चलिए आपको एक बात बताती हूँ, मजेदार बात। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारा कोई बहुत ही वैल्यूएबल प्रेशियस चीज अगर खो जाए, मान लो अंगूठी हो, झुमका हो, या फिर कोई गाड़ी हो, तो फिर अगर ना मिले तो देयर इज अ स्कोप कि हम नया खरीद सकते हैं, वैसा ही ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे प्रेशियस है इस दुनिया में, हर किसी के लिए, हर एक के लिए, वो क्या अमीर क्या गरीब, सबके लिए वो बहुत ही मूल्यवान है और दोबारा नहीं मिल सकता, वो है

0: बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इन टू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: यो से सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा बच्चन।
1: अगला गाना बोल बच्चन सुन के कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा बहुत अमिताभ बच्चन के कई सारे फिल्मों को याद करने लगे थे, क्योंकि वो मिलेनियम स्टार हैं। वो जिस पिक्चर में रहे वो तो कमाल धमाल करता ही है, और जिस पिक्चर में ना हो उसमें भी वो बोल बच्चन जैसा धमाल कर देते हैं। तो चलिए अगला गाना आपको सुनाती हूँ, जय हो फिल्म से।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:49 और ऐसा है कि ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 3:02 से लेकर 4 तक। और अभी मैं बता देती हूँ कि अभी तो मैं जाऊँगी 4, आपको छोड़कर, यूँ तो छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि लाइफ में समय के पाबंद होना बहुत ज़रूरी है और समय की इज्जत करना और समय से काम करना। तो अभी नहीं जाऊंगी, तो 7:02 पर कैसे लेकर आऊंगी कार्यक्रम छाया लोक नज़ारा फिल्मों का। तो फिलहाल चलते चलते आप सभी के लिए बॉर्डर 2 जो रिलीज़ हुई थी 2026 में, मुख्य रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एक भावुक और देशभक्ति से भरी वॉर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत की बात करूं तो इसका शानदार निर्देशन, दमदार एक्शन और सैनिकों का मानवीय पहलू। जी हाँ, और अब आपसे इजाजत लेती है आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत। एक खूबसूरत सा गाना, घर कब आओगे, इस गीत को आप सुनेंगे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौड़ की आवाज में, जावेद अख्तर ने इसे कलमबद्ध किया है और अनु मलिक ने संगीत से सजाया। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए सुलक्षणा पर्वत को। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी शाम मंगलमय हो, आपकी रात मंगलमय हो।

नजारा फिल्मों का। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छाया लोक। और छाया लोक में थर्सडे इवनिंग आपके लिए रहता है स्पेशल सेगमेंट और उस सेगमेंट का नाम है नज़ारा फिल्मों का। और जब हम बात करते हैं नज़ारा फिल्मों का तो आपको बता दूं कि आज जो है वो नज़ारा फिल्मों का में मतलब ऐसे कौन कौन से गाने हैं जो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी ये सब आप समझेंगे गानों को सुनते सुनते। लेकिन जरूरी है कि मैं थोड़ा बता भी दूं आपको, तो मैं बता दूं कि ऐसा है ना कि बॉलीवुड और भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना खुद हिंदी सिनेमा। सिनेमा और ट्रेन का ये जुगलबंदी 1930 के दशक से शुरू हुई और 1950-60 के दशक तक फिल्मों में ट्रेन यात्रा गाने और रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल एक आम बात बन गई। सिनेमा और भारतीय रेल के सफर के बहुत ही सुंदर सुंदर पड़ाव हमें देखने को मिला है। और ऐसा है कि पहली बार अगर मैं कहूँ तो शायद मतलब एक गाना आया था 1930 में, एक फिल्म थी, फिल्म का नाम जो है शायद मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको बता दूँ तूफान मेल जो है वो एक गाना था उसमें और पहला गीत वो था और 1930 में ही वो फिल्म रिलीज हुई थी। अभी मेरे पास वो गाना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल आप तक पहुंचाती वो गीत। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जिस गीत से मैं शुरुआत करूंगी उस गीत को पिक्चराइज किया गया था ट्रेन के रूफ पर, यानी कि ट्रेन के ऊपर, और वो भी गाते गाते और डांस करते हुए। तो चलिए थोड़ा बहुत तो आपको भी याद आ गया होगा, क्योंकि ऐसा है ना कि जब नॉलेज की बात करें और नॉलेज में भी अगर एंटरटेनमेंट की नॉलेज की बात करें तो हम सबका जो सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है ना वो बॉलीवुड का ही होता है। तो अगर ट्रेन के ऊपर कोई डांस वाला सॉन्ग है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे दिल से का गाना छैया छैया। तो चलिए सुनवाती हूँ आपको छैया छैया फिल्म दिल से रे। और इस गीत को बड़ी खूबसूरती से कंपोज किया गुलजार ने और मतलब गीतकार हैं गुलजार और जो है इसे इसके कंपोजर हैं ए आर रहमान।

राइट नाउ अभी इस वक्त आप सभी का डेस्टिनेशन है म्यूजिकली योर्स वाला चैनल, जहां आप सुन रहे हैं नजारा फिल्मों का थर्सडे इवनिंग सेगमेंट रहता है छायालोक में नजारा फिल्मों का। और ये कार्यक्रम इस सफर में, इस कार्यक्रम के सफर में आपके साथ है आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से एक बार फिर आप सभी का वेलकम करती है इस कार्यक्रम में। और ऐसा है दोस्तों कि छैया छैया के बाद हम जरा अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, दिल से दिल तक वाले सफर को। एक गाना था जिसे हमने सबने सुना था, और या फिर सब ना कहूं तो अभी जो छोटे हैं उन्होंने भी सुना होगा, फिल्म आराधना का सदाबहार गीत, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू। ये फिल्म आराधना रिलीज हुई थी 1969 में। गाने में राजेश खन्ना जीप चलाते हुए और शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में सफर करती हुई दिखाई गई थी। इस गाने की शूटिंग और इससे जुड़े जो कुछ दिलचस्प तथ्य हैं वो भी मैं आपसे साझा करना चाहूंगी, सुन के आप भी हैरान होंगे। वास्तविक शूटिंग स्थल जो है, राजेश खन्ना को जिन खूबसूरत पहाड़ियों और रास्तों पर खुली जीप, विलीज जीप चलाते हुए दिखाया गया था, उसकी शूटिंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। स्टूडियो में फिल्मांकन हुआ था क्या? शर्मिला टैगोर वाला ट्रेन के दृश्य की शूटिंग दार्जिलिंग में नहीं बल्कि मुंबई के एक स्टूडियो में की गई थी। शर्मिला जी को जो है उस वक्त जो है समय जो है उतना ज़्यादा नहीं था, तो शर्मिला जी को एक सेट पर बिठाकर फिल्माया गया था, क्योंकि उस समय उनके पास शूटिंग के लिए कम समय था और वे अन्य प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त थीं। और गीत और संगीत की बात करूँ इस गाने की, तो इस खूबसूरत गीत को महान गायक किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी। इसका संगीत SD बर्मन ने तैयार किया था और इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

नजारा फिल्मों का। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:20 और 57 सेकंड, और फिलहाल घड़ी जो है ना उसकी जो सेकंड वाली जो काटा है वो टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक चलते जाती है, जैसे कि हमारी रेलगाड़ी कूचुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चलते जाती है। पुराने गीतों का सफर, और इस पुराने गीतों के सफर में आज हम वो सारे गीत लाए हैं जिसे पिक्चराइज किया गया था रेलगाड़ी पर, कुछ रेलगाड़ी के अंदर कंपार्टमेंट में तो कुछ उसके छत पर। और कुछ एक आध गाने ऐसे भी थे जिसमें जो है आपने देखा होगा कि वो रेलगाड़ी ही है, कुछ तो पूरे कंपार्टमेंट जैसे है वो जो होता है ना गुड्स ट्रेन, और कुछ जो होते हैं ना वो खुले होते हैं जिसपे मतलब सामान रखा हुआ रहता है। तो अगला गाना जिसे आप तक मैं पहुँचाऊँगी उसे हमने लिया है उस फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1974 में, फिल्म का नाम अजनबी। हाँ, अजनबी कहते ही आपको याद आ गया होगा वो गाना हम दोनों दो प्रेमी। जी हाँ, यही गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी, और इसे भी चलती ट्रेन पर फिल्माया गया था और देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये गाना जो है वाकई में बहुत ही कर्णप्रिय है। इस गाने में आपने देखा होगा जीना तमान और राजेश खन्ना को। चलिए आप तक पहुँचाती हूँ ये गीत। इस गीत को बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया आनंद बख्शी ने, और संगीत से सवारा आरडी बर्मन ने, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

है अपना दिल तो आवारा। हाँ, ये गाना 16वां साल फिल्म का है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में, बॉलीवुड की फिल्म 16वां साल, और बेहद लोकप्रिय गीत था ये, है अपना दिल तो आवारा। ये गाना देव आनंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। लोकेशन की बात करूं नज़ारे की, तो ये गाना ट्रेन की यात्रा के दौरान फिल्माया गया था, जिसमें देव आनंद और वहीदा रहमान सफ़र का आनंद लेते नज़र आते हैं। इसे मशहूर गायक हेमंत कुमार ने अपनी जादुई आवाज़ में गाया था और इसका संगीत एसडी बर्मन ने दिया था। मतलब इस सदाबहार गीत में ना माउथ ऑर्गन की धुन बजाई गई, धुन जो है गाने में चार, मतलब बीच बीच में हमें ये सुनने को मिलता है, जिसे राहुल देव बर्मन ने बजाया था। गाने के बोल मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे।

ऐसा है दोस्तों कि ये जो है ना आज का सफर नजारा फिल्मों का कुछ चुक चुक चुक करते हुए आगे बढ़ा रही हूं मैं, और अगला गाना आपको सुनवाऊंगी उस फिल्म से जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1974। फिल्म का नाम दोस्त और बेहद लोकप्रिय गाना है जिसे मैं अभी आपको सुनवाऊंगी। और अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करूं पिक्चराइजेशन की, तो इस गाने की शूटिंग खूबसूरत शिमला कालका टॉय ट्रेन के रूट और वादियों में की गई थी। किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है और स्क्रीन पर दिखे थे धर्मेंद्र, संगीत का जादू है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार आनंद बख्शी। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक गीत है जिसमें ट्रेन रेलगाड़ी को जीवन का प्रतीक माना गया है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: नजारा फिल्मों का।
1: '62 में मशहूर फिल्म प्रोफेसर रिलीज हुई थी और इस फिल्म में गाना था मैं चली पीछे पीछे जहां। इस ट्रेन वाले सदाबहार गीत में मुख्य रूप से अभिनेता शमी कपूर और अभिनेत्री कल्पना मोहन नजर आई थी और इस गाने को जो है पिक्चराइज किया गया था ट्रेन में, चलती ट्रेन में। और इन दो हीरो हीरोइन के अलावा ट्रेन में बैठे अन्य सहयात्री और स्थानीय लोग भी शामिल थे। इसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया है, संगीत शंकर जयकिशन का और बोल शैलेंद्र के लिखे हुए हैं।

ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, मतलब मुझे कुछ ज़माने को नहीं दिखाना है। ये फिल्म का नाम है ज़माने को दिखाना है, जिससे इस फिल्म में से एक गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी, होगा तुमसे प्यारा कौन, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे कलमबद्ध किया है और आर डी बर्मन का संगीत है। शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे और वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक है ये। ये भी ट्रेन पर ही पिक्चराइज हुआ है।

ऊटी के हिल स्टेशन पर इस गीत को फिल्माया गया था जिसे अभी आपने सुना है। और अब अगला गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म परिणीता से।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय उजला है 7:54 और आपको बता दूं कि 8:02 के लिए आप सुनेंगे बंगला में स्थानीय समाचार। और फिलहाल को चुक चुक चुक चुक इस रेलगाड़ी वाले नज़ारा फिल्मों का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवाऊंगी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक चुक चुक चुक चुक चुक सदाबहार गीत दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने ही गाया था फिल्म आशीर्वाद में। और ये फिल्म आशीर्वाद रिलीज हुई थी इन द ईयर 1968। गीतकार कौन थे? इसके बोल जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन के भाई हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने जो है इसे इस गीत को लिखा है। और बहुत अच्छा संबंध एक तरीके से भाई वाला था इन दोनों का, और इसीलिए जो है वो कभी कभार जो है ये मानते भी थे कि हाँ वो भाई जैसे हैं। और संगीत की बात करूँ तो वसंत देसाई ने संगीत दिया है, और इसमें दिखाया गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे, हम लोग बचपन में जो खेलते थे ना रेलगाड़ी चुक चुक चुक चुक, एक दूसरे के कपड़े को पकड़कर पीछे से, और या फिर उनके कंधे पर हम दोनों हाथ रख देते थे और यूं ही एक लंबी रेलगाड़ी बनाते थे, और फिर हम लोग खुद ही दौड़ते हुए और खेलते थे रेलगाड़ी रेलगाड़ी। और कुछ ऐसा ही पिक्चराइज हुआ है इस गाने में भी।
2: आओ बच्चों खेल दिखाए।

0: भप भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन

गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेल गाड़ी रेल गाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टम दिमलीपट्टम दिमलीपट्टम मछलीपट्टम ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: नजारा फिल्मों का। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:03 और 28 सेकंड और आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है, वेलकम करती है उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है नजारा फिल्मों का। और आज मैं आप सभी के लिए खास करके वो सारे गाने लाई हूँ जिनका संबंध ट्रेन से हो, ट्रेन के अंदर फिल्माया गया हो, ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया हो, कुछ कुछ सीन्स जो गाने के हैं वो ट्रेन पे फिल्माया गया हो। और एक गाना तो मैंने आपके लिए वो भी प्ले किया जो कि ट्रेन पे तो नहीं है लेकिन वो एक खेल हुआ करता था, पहले बच्चे खेला करते थे। और मैं झूठ ना कहूँ, मैंने भी ये खेल खेला हुआ है, रेलगाड़ी चुक चुक चुक चुक। हम सभी कम से कम 8-10 बच्चे, 15 बच्चे, जितने भी बच्चे होते थे सभी एक दूसरे के पीछे कंधे पर दोनों हाथ रखते थे और गाते हुए आगे बढ़ते थे। तो और हम सभी के मन में ये था कि शायद हम लोग रेलगाड़ी चला रहे हैं और जो सबसे पहले होता था खड़ा उसे हम इंजन मानते थे ट्रेन का। तो चलिए अब इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाना चाहूँगी वो गाना, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की गीत। ये जो है 1954 में, 1954 में फिल्म जागृति का है, प्रसिद्ध फिल्म का गाना है और ये एक बेहतरीन देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और हेमंत कुमार, और इसे हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में स्वयं प्रदीप और उनकी कोरस टीम ने गाया था।

अगला गाना आप सभी के लिए शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

ट्रेन में ही फिल्माया हुआ अगला गाना भी है। फिल्म का नाम गंगा जमुना सरस्वती, गीतकार इंदिवर, संगीतकार अनु मलिक, आवाज कोकिल कंठी लता मंगेशकर की।

अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इस गीत को आप सुनेंगे अमित कुमार और उदित नारायण की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने संगीत इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो गाने का धुन कोंकण रेलवे की खुशी को बहुत अच्छी से दिखाता है। भारत के सबसे हरे भरे हिस्से से होकर गुजरने वाली एक यात्रा, इसमें गोवा का वास्को डगामा रेलवे स्टेशन भी दिखाया गया है। इसे अमित कुमार और उदित नारायण

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

जब बात हो रही है उन गानों की जो कि ट्रेन में पिक्चराइज हुआ है पूरा गाना या फिर आंशिक रूप से, तो क्या है कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला गाना फूलों के रंग से दिल की कलम से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को हम आप तक पहुंचाएंगे। ये फिल्म प्रेम पुजारी का गाना है और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1970 में। इस माने बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक गाना है ये, और इस गीत को सुनते सुनते आप भी बिना गुनगुनाए हुए नहीं रोक पाएंगे अपने को।

फिल्म झुमरू से आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में अभी इस गीत को, और अगला गाना फिल्म की एन का से श्रेया घोषाल और अरमान मलिक की आवाज में।

ऐसा है दोस्तों कि स्टूडियो की घड़ी में अब समय हो चला है 8:44 की ओर, घड़ी जो है घड़ी की सुइयां भाग रही हैं और अब 9 बजे तक ये कार्यक्रम आप सुनने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगला गाना मैं आपको सुनाऊंगी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, क्योंकि इस फिल्म में कई बार ट्रेन को दिखाया गया है और क्या बताऊं आपको कि मतलब ट्रेन का इतना इम्पोर्टेंस हो गया था इस फिल्म में कि क्या बताऊं। जो लास्ट में भी आपने देखा होगा एक बार जब अमरीश पुरी कहते हैं अपनी बिटिया काजल यानी सिमरन से कि जा सिमरन जा अपनी ज़िंदगी जी ले, तो उस वक्त भी दिखाया जाता है कि वो दौड़ती हुई भागती हुई जो है वो ट्रेन में जो है चढ़ती है और शाहरुख खान हाथ पकड़ लेते हैं। और क्या है कि मतलब उस फिल्म में जब ये शाहरुख और काजल स्विट्जरलैंड में पहुंचते हैं तो वहां पे भी ये यूरोप टूर पे जो निकलते हैं तो वहां कई बार दिखाया गया है कि ट्रेन में जो है इनको सफर करते हुए। तो चलिए उन सब को ध्यान में रखते हुए आपको मैं सुनवाती हूँ लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में, हो गया है तुझको तो प्यार सजना।

ऐसा है दोस्तों कि अब अंतिम गीत आज के कार्यक्रम छायालोक के सेगमेंट नजारा फिल्मों का में जो मैं प्ले करने वाली हूं आप सभी के लिए, उसे हमने लिया है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1980 में और गीत के बोल हैं पल दो पल का साथ हमारा। ये गाना ट्रेन के डिब्बे में फिल्माया गया है। मुख्य रूप से इस गाने को अभिनेता हीरो जितेंद्र और आशा सचदेव पर फिल्माया गया है। और अगर आपको याद आए तो ट्रेन के अंदर कव्वाली गाते हैं और अन्य सहयात्री उनका साथ दे रहे होते हैं। तो चलिए इस गीत को सुनते सुनते आज के कार्यक्रम छायालोक नजारा फिल्मों का इसे विराम देते हैं। और यही कहूंगी चलते चलते, मतलब सुलक्षणा जैसा हमेशा कहती है आप सभी से कि चारों तरफ खुशियां बिखेरते रहिए, खुशियों के फूल खिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुशियों के फूल चारों तरफ खिलाते रहिए, क्योंकि वापस ये आप ही की झोली में आने वाली है खुशबू और खूबसूरती के साथ। इसी के साथ कहूंगी कि शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।